लाथी भूख तृष्ण सब लाथी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे धरयो, मन जीतो जग सारी, तृप्त अघाए।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस देह ना मानस देह बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ मुक्त

पत पाए। गौड़ी महला पहला, हों मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हों हों करत नहीं सच पाई।

का गुर पेटे सो झगर चुकावे, जेती है तेती केहु नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही। हमें बंधन बंद पवावै, नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काल कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया।

अलख अपेवा। सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, ना मोह भूले जम का दुख सहना। मैं तर नाम ज्यों रख हो रहना, चौधरी राजे नहीं किसै मुकाम। शाह मरै संचह माया दाम।

चालहि गुरमुख हुक्म रजाई, रहहि अतीत सच्चे सरनाई। सच कर बैसै काल न जो है, मन मुख कौ आवत जावत दुख मोहै। रहाउ अपयो पियो अकथ कथ रहियै, निज कर बैस सहज कर लहियै। हर रस माते इहो सुख कहियै।

जन पूरा तित कट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा तार जिनकै हृदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई।

पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द न

आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिए सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पहाओ, परमे फूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबह न जाए, जिचर शब्द ना पीजै हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मो आकार, मर मर जम्मै वारो वार। सूतक अग्न पौणै पानी माहे, सूतक भोजन।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

रहे गुर कै शब्द पंच संघार आप तरह सगले कुल तारे माया मो नत बाजी पाई मनमुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई बहुते भेख करे भेख तारी अंतर तिशना फिरे अहंकारी आप न चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोह अत परम पुलहाई दिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रत्ते सदा बैरागी गृह अंतर साच लिव लागी नानक सतगुर सेव है से बड़भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण भरमे नाही निज कर वासा।

कोई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावै नामो सेवै नाम सहज समावै।

मांग है लई हर आपे कृपा करे नाम देवै गुरमुख रतन को विरला लेवै नानक गुण गावै हर अलख अपेवै।

मन कर हला सतगुर पुरख ते आए रहाओ, मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए, जिथे लेखा मंगी है हर आपे लै छाए, मन कर हला अतने

सुख सहज निवास जास जपत एह अगन न पोहत जास जपत एह काल न जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाथा जास

होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहरै।

दिन सबेताला गिर तर धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत।

संग तरै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

नाम समाहे। जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता।

हर संग रखवाला, पूर्ण पुरख नवतन नितबाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस नाम।

दिखारिया गुर निव निव लागो पाए दिहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक एक बलहारिया सब गुण किस ही ना है हर पूर पंडारिया चहों दिस जपिया नाओ सुख सवारिया मैं आही ओढ़ तुहार नानक बलहारिया गुर काट

मंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो।

गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बिद मिलो प्यारे। सात हन सुहागन सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे। अपने गुर मिले।

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। श्लोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एको रव।

जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाय।

समाने प्रगट पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तेह जपना। श्लोक

थित पाव हो गोविंद भज हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यो या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो।

होत सब जाकी, तज अभिमान छुट्टै तेरी बाकी। रण दरगाह तौसी जह पाई, जो गुरमुख राम नाम लिवलाई। रहत रहत रह

पौड़ी खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए खेद मिटे साधु मिलत सतगुर बचन समाए खिमा गही सच संचयो खायो अमृत नाम खरी कृपा ठाकुर पई आनंद सुख विश्राम।

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल पौड़ी अखर महंत्र पवन प्रभ तारे

पंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरुदेव मंत निरुधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर।

सन दसना प्रभ कौ सिमरह से धनवंते प्रभ कौ सिमरह से पतवंते प्रभ कौ सिमरह से जन परवान प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरह से बेमुहताजे प्रभ कौ सिमरह से सर्व के राजे प्रभ कौ सिमरह से सुखवासी प्रभ कौ सिमरह सदा

प्रब कौ सिमरहै से मुख सुहावे, प्रब कौ सिमरहै तिन सुख बिहावे, प्रब कौ सिमरहै तिन आत्म जीता, प्रब कौ सिमरहै तिन निर्मल रीता।

अष्टपदी जह मात पिता सुत मीतना पहाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जह मुश्किल होवे अत पहारी हर को नाम खिनमा है उदाहरी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावहो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख ना बुझावै।

देख अनेक अगन नहीं बुझाए, कोट उपाव दरगाह नहीं सिझाए, छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज।

निर्मल कर्म सगल क्रिया महे उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम महे उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी महे अमृत बानी हर को जस सो

दयाल। करतूत पशु की मांस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया, शब्द नाहे कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान

बसह सुख मंदर तिसह त्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पडंबर हंडावहें।

हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रवता कह जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास।

सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म महसोद है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित कै उपदेश।

साफ अपमरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए।

बृहस्पदी। मानो की टेक बिरछी सब जान, देवन कहो एक भगवान। जिसका दिया रह अघाय, बहरना तृष्णा लाग आए। मारे राख को आप, मानुख कै कृष्णा ही हाथ। तिसका

फिर जाप अष्टपदी जब अकार एहु कछ न दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत।

जह निर्मल पुरुख पुरुख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसह भूख

माए बाप मित्र सुत पाई, जह सर्ब कला आप है परवीन, तह वेद देव कहाँ को चीन। जब अपने आप उरत हारे, तो शगन अपशगन कहाँ बिचारे। जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हूँ आप। जह अशल अशेद अभेद समाया, ऊहां किसह व्याप्त।

नानक तिन मह एहो विसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कह हृदय सब धर्म, संत जना सुन है शुभ बचन, सर्व व्यापी राम।

सब कोए। सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए।

जिन सतगुर मिलिए सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिए सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिए सतगुर की रीस है होर का

करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे

ए हर वस संभाले नाम निधान हर बन जिये हीरे परवाले विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बेताले से उजड़ परम पवाई है ज्यों चाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया।

कहे गुरिया गए मन खोटे कूड़ कूड़ियारे। जहां गुर कहे उठो मेरे भाई बह जाहे पुसर बगलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै चुन कढे लद्धो वारे। ओए अगै पिछै।

पौड़ी जिनके चित कठोर है से बहन सतगुर पास उथे सच वरतदा कूड़ियारां चित उदास उए वल छल कर झट कढ दे फिर जाए बहें कूड़ियारां पास विच सच्चे कूड़ न गड़ई मन वेखो को निरजास कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवां।

जहे अबोल तहमन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओहो है तस लखे ना कोई, अलह लहो तो क्या कहो, कहो ताको उपकार, बटक बीज महरव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार, अलह लहंता पेदशय, कश कश पायो पेद, उल्ट पेद मन भेदयो, पायो अपंग अशेद।

तेरी भगत भंडार जी। परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी। हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक तेरी अनेक करहे हर पूजा।

पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किश लेव हो जो उपजाय सो अलाख अपेव हो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

देवत्यां दर्शन कैताई दुख पूख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मह रहते कर कर भगवें पे।

चौथा गुण गावां गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आख बखाणी जब जब नाम मन भया आनंदा सत सत सतगुर नाम दृढ़ाया सत सत सतगुर नाम

सब जी संहारे एको एक आप एक एक है सगला पासारे जब जब होए सगल साध जन एक नाम तिहाए बहुत उधारे।

शगुन अपशगुन तिसको लगहे जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ पावे पुन दान जब तप जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना।

हरि राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहज हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़।

अमृत शक्षके गुरतुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हर अमृत भगत।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजाय, खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल पए संग तेरे, इंद्री का बल थाता। चरण रहे कर टरक परे, है मुख हो न निकसै बाता। थाके पंच

माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुझै कोई। सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहा। जल तिरंग

भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच देख काम लुभ दराता, मन बिसर प्रभ हीरे रहाओ।

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितम।

मन मनम सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर भवजल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तौ शरणी लब लो।

मजलिस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल। इत मद पीते नानका बहुते खटिय है बेकार।

गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवै सोए। गुरमुख शब्द

चलिए जो हर प्रभु का मैं देश नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पखा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी ढोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा

निर्मल मन करना, कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा, नानक नाम पाया प्रभ तूठा।

सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गाव है जो तेरे मन भाव है माया मोहे चेत है नाही अहला जन्म गवावे एक

सदा सुख बसहिं, सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए। दूजै पाए परम विभूति।

सुख होई। गुरजेवड गुरजेवड दाता मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा।

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बन जारो। पुंडड़े नाम विसारिया बुडड़े क्या तिस चारो गुण

सचड़े आप जगत उपाया, गुरबिन कोर अंधारो, आप मिलाए आप मिले, आपे दे प्यारो सहज वापारो,

नानक गुरमुख सदा सुख पावे अन दिन हर बैरागी पौड़ी से गुर सिख तन तन है जिन्नी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी गुर सत गुर

पंच पदे। अपना कर्म उस राख न सा कहे की पर कर जोहन लागा, कर दर राख है जे रस चाख है। जो

जो अंतर सो बाहर देखो अवरना दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलताओ ठाक रखो कर अपने गुर मिलिया ए मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो।

चात्रक जल, ज्यो चात्रक जल बिन बिल लावै, बिन जल प्यास न जाय। गुरमुख जल पावै सुख सहजे, हरिया पाए सुपहाई।

थापै साथ संगत बुद्ध पाई साकत का बकना इउ जानौ साकत का बकना इउ जानौ जैसे पवन चुलाई कोट पराध अशाद्यो इहु मन।

गुरपूरे की बाणी पार ब्रह्म मन पाणी नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी सोठ महला।